प्राणी पिता माता धर्त महत दिवस रात दुर्दाई दाया खेल सगल जगत चंगियां या

0: पौड़ी किता अंदर सब को विख नदरी हेठ चलाए दा आपे दे बड़े आई आपे ही कर्म कराए दा
1: बड़ा बड़ा भट मेदनी सिरे सिर धंधा लाए दा नदर पठीजे करे सुल्तना काओ कराए दा डर मंगत देख ना पाए दा
2: You're listening to SeekNet Radio.

0: मैं अंधले की देख, तेरा नाम खुंडकारा।
1: खुंडकारा क्यों दे?
0: खुंडकारा लकड़ी दे उस टुकड़े नु कहंदे ने जिस उते पटरा टिकाया जांदा।
1: पटरा क्यों दे?
0: जिस उते टोबी कपड़े टुकदे ने। पगर नाम देव जी दाद दे छीने सन, कपड़े धोंदे धोंदे अपनी आत्मा नु हरी नाम नाल धोंदे सन। इसे लिए उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैंने तेरे नाम की उन्नी टेके जिन्नी के पटरे नु खुंदकारे दी।

देव जी, नाम जपदिया जपदिया ऐसी बिरती आप दी ब्रह्म ज्ञानिया दी अवस्था प्राप्त हुई के ठाकरां दे इशनान करन लई जल परन गए ते मन विच ख्याल आया भई 42 लख जी जल में होते बीठल पैदा काहे करो। 42 लख जून जल विच है, 42 लख जून इस तरत आकाश ते है, हुन बीठल नू मैं वखरा किवें भोग लवावां। हे भगवान, हे ईश्वर, हे वाहिगुरु, जिथे किथे तू ही तू है, कोई दूसरा नजर ही नहीं आ।

दुनिया दे मालिक साहिबे दो आलम बानी के बोहित नाम के जहाज साहिब धन गुरु अर्जुन पातशाह सतगुरु जी अपने मुखार बिंद तो अपनी रचना तो इन्हां बचना दा उच्चारण करते ने हजूर फरमान करते ने प्यारिया गुरु नाल प्रीत किदां दी लाउणी है मालक नाल स्नेहे किदां दा जोड़ना है साहब जी सानू ओ रस्ता ओ मार्ग ओ प्यार भरे बचना नाल उन्हां जुगतियां नाल सानू ओ रस्ता दसते ने जिस रस्ते ते जिस मार्ग ते जांदे आ तू गुरु नानक नू मिल सकना साहब कृपा करदे ने बख्शिश करदे ने कलजुगी जीवां ते भाई हजूर कहंदे ने

पहला मार्ग पहला रास्ता पहली जुगत। सतगुरु कृपा करदे ने साहिब धन गुरु अर्जन पातशाह साहिब कहिंदे ने प्यारे आ कदी मच्छी नू देख लै उदा पानी नाल किन्ना प्यार है उदा जीवन ही पानी है। एक खिन भी ना धीरे एक पल एक क्षण भी ओ नहीं रह सकती दे जे पानी विचों कटदे हो ते भाई उन्हें मर जाने। जे तेरा प्यार इदां दा हो जाए गुरु नाल इदां दा सुने किते तू गुरु नाल कर लवे ते तेरे जीवन विच पलटा ना आ जाए। शायद कहिंदे ने

दूसरा रास्ता दूसरा मार्ग ते दूसरी जुगत साहब सानू दसते ने किते जातक नू वेख लै पपीए नू वेख लै जेड़ा स्वाति बूंद के पिछे पपी पपी प्या करदा साहब बाणी विच कहिंदे ने

स्वाति बूंद से पीछे प्या तड़पता है आसमान वाल, मुंह खोल के ते पपियो पपिया प्या करदा है, तरले करदा है, जोदड़िया करदा है मेरे पातशाह के, स्वाति बूंद मेरे मुख विच पा देवे ते मैं तृप्त हो जाऊं। सब आंदे ने प्यारिया किते एदां दी प्रीत कर लै, एदां दा स्नेह कर लै, एदां दे गुरु नाल प्यार पा लै, फिर ते तेरे जीवन दी गल बन सकदी है, नहीं ते तेरा जीवन अधूरा है।

शैव फरमान करते ने गुरु कितना प्रसन्न है, गुरु कितना दयाल है, गुरु कितना रहमतां दा साईं है, एक पल भी नहीं विछड़दा त्यारिया है। पाछा तू मेरे ते कृपा कर, किड़ी कृपा कीती है, कितनी रहमतां कीतियां ने, कितनियां रहमतां दा मीह वरसाए मेरे ते। धन देंदी साच सनेहा, एक मेरा सुनेहा है प्याच्छा हजूर।

गुरु नानक दी मोर ला के धन गुरु अर्जन पातशाह साहब कृपा करके आंदे ने प्यारे कौ नानक छंत अनंत ठाकुर के उस मालिक दे कितने मैं गुण गाव बेअंत है मेरा पातशाह बेअंत है मेरा मालिक बेअंत है रहमतां दा साईं कितने गुण गायन करें हजूर बाणी विच कहिंदे ने

साहब जी रचना ते इको ही है लेकिन तेरे गुण बहुते ने। भगत कबीर जी महाराज उस मालिक दे गुणा दा अथाह बयान करदे होए अपने रचना तो कृपा करदे ने ते आंदे

धन गुरु अर्जन पातशाह। साहब अपने मुखार बिन तो आंदे ने एक घड़ी दिन समोको बहुत दयारे, ये मेरे मालका एक घड़ी भी एक पल भी तेथों जे मैं बिछड़ जाना ते इंज लगदा है कितने ही जुग बतीत हो गए ने, कितना समा लंघ गया।

मेरे मालिक रहमत कर दे मैनू ओना दे चरणा दी धूड़ प्राप्त होवे जो दिसै को सिखड़ा तिस निम निम लागो पाए जियो आखा बिरथा जी की गुरसज्जन से मिलाए जी तू जिथे मिलिया मेनू भी मिला जिथे तेरी सांझ बनी उथे मेरी भी सांझ बना दी मैं अपने मन की अवस्था उन्होंने को आखा जेड़े तुरे हुए ने पहुंचे हुए ने इस मार्ग ते जिन्होंने चार कदम तय किए हुए मंजिला मारते तुरे जा रहे ने जे जेड़े मंजिला मारते जा रहे ने साहब कहंदे ने अखाउंदे ही नहीं केवल वो की करते ने उद्दम करे भलके प्रभाती अमृत वेले प्रभात का मतलब है सूरज चढ़न तो बहुत पहला डान ते मारन च फर्क है जिसने सूरज चढ़ता है उसनु डान कह दें लेकिन सवेरा इस तो पहला सवेरा का मतलब होंदा है चंगा वेला सवेला सूरज चढ़न तो बाद जिहड़ा बंदा भगती की गल सोचता है ना वह कवेला कर बैंदा सवेरा जिन्होंने सामना है वह अमृत वेले सूरज चढ़न तो बहुत पहला पहला अपना काम नबेड़ते ते जेड़े इस मार्ग से तुरे हुए ना भाई साहब तो बड़ी खूबसूरत गल कही भाई साहब कहंदे ने ऐसे लोग जेड़े गुरु मार्ग से अमृत वेले तुरदे ने मेरा तो जी करदा है उन्होंने चरणा की खाक हो जा नख सिख लो नख पैरां दा नहु नख शिख सिर दी चोटी नख शिख लो सगल अंग रोम रोम कर काट काट सिखण के चरण पैवाई कट कट के मेरा शरीर सिखां दे चरणा तो निछावर कर दे वारने कर दे कदने अग्न जलाए हुन पीसन पिसाए ते चक्की च पी दे अग च भुन दे लै उड़े पौन होए अनेक प्रकारिये तरह तरह नाल हवा विच उड़ा दे उस हवा विच मेरे शरीर की खाक उड़ जावे जिथे कहंदे ने जत कत सिख पग धरे गुर पंथ प्राद सवेरे सवेरे जेड़े जेड़े रस्तियां तो गुरु के सिख गुरु चरणा वाल तुर के आउंदे ने जेड़े जेड़े रस्तियां तो गुरु के सिखां दे चरण गुरु के सिखां दे पैर गुरु चरणा वाल गुरु द्वारे वाल वधदे ने ताहू ताहू मार्ग मैं पसम तो डारी है मेरे शरीर की पसम जेड़ी उन्हां उन्हां रस्तियां ते फैला दे उन्हां उन्हां रस्तियां ते विछा दिओ मेरे शरीर नूं सवा करके पसम करके तेह पद पादक चरण लिव लागी रहे उन्हां रस्तियां ते पैदल चलण वालियां दे चरणा नाल मेरा प्यार बनिया रहे मेरी लिव लगी रहे दया के दयाल मोहे पतत उधारिये ताकि उन्हां दे चरणा दी खाक प्राप्त करके मेरे शरीर दी खाक उन्हां दे चरणा दी छो प्राप्त करके मैं पापी पार उतर जा मेरा पापी दा उधार हो जाए कैसी प्यारी जीवन जाच है उत्तम करे पलके प्रभाती अमृत वेले उठे उत्तम करे आलसी ना रह जावे क्योंकि आलसी दा निरा रोगी किसी पासे भी कामयाब नहीं हो सकता गुरसिख जीवन दे हर मैदान विच सफलता नूं प्राप्त करने वास्ते उत्तम करना और महाराज दे पावन बाणी च सुचेत कराया उत्तम करेंदिया जीओ तू कमावदिया सुख पुंज ध्यानदिया तू प्रभु मिल नानक उतरी चिंत उद्दम करके जी उद्दम करके कमाई भी कर ते ध्यान करके भगती करके प्रभु दे नाल सांझ भी पर पा लै इधर भी मिलाप कर लै इस तरह तेरा जीवन एक चैन वाला सुख वाला निश्चिंती वाला हो इशनान करे अमृत सर नहावे शरीर करके भी शुद्ध हो ते जिथे बाणी दा अमृत वसदा हो उस सत्संगत दे अमृत सरोवर में आके मन भी डुबिया लवा उपदेश गुरु हर हर जप जापे फिर गुरु का उपदेश श्रवण करे उसके अनुसार ही उतर गए वाहगुरु नाम सिमरन करे उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन के सदकाम अमृत छकने ना पंजा प्यारिया वो जिसले कहिंदे ने गुरसिखा अज तो तेरा जन्म गुरु नानक दे घर विच होया कलगीधर पातशाह दे घर विच होया तेरा पिता गुरु कलगीधर तेरी माता साहिब कौर तेरा जन्म केसगढ़ साहिब दा ते वासी तू आनंदपुर साहिब दा रही चल भावे जिथे तेरा दिल करदा किस नगर च रहो तेरी सांझ आनंदपुर वाले नाल बनी हो बल्कि तेरा हिरदा उस आनंद दे
नगर दा वासी होवे जिसनु किया गया बेगम पुरा शहर को नाओ तू खांदो नहीं ते ठाओ तेरी मानसिक अवस्था आनंद वाली हो तू उस दे उस आनंद वाली नगरी दा भी वासी होवे जिथे भगतां दा वासा हुंदा है संतां दा वासा उस आत्मक अवस्था दी उच्चता नु तू प्राप्त हो उथे नाले भी कहंदे गुरमुख तेरे ते अज तो ए पाबंदी आयद हो गई। ये गल समझ लेना जेड़ा बंदा पाबंदियां अंदर नहीं जींदा वो आप उतरा डिसिप्लिन नु ना धारण करना घरां दा डिसिप्लिन है स्कूलां कालजां दा डिसिप्लिन है फौजां दा डिसिप्लिन है बाजारां कारोबारां दा भी अपनी किस्म दा एक डिसिप्लिन है उस डिसिप्लिन तो बाहर जाओ कानून आग्या नहीं देता। धर्म दे संबंध च ऐसा लोगों ने समझ लिया जो मर्जी करो ऐसी गल नहीं चले गुर सतगुर का जो सिख आखाए वह सिखी दे डिसिप्लिन च चले गुर सिखी दे जो नेम ने और वो नेम तुहानू पता ने सारिया नू पता है पंज प्यारे हुक्म देणगे अज तो तू पंजां ककारां दा रह धारनी होना इन्हां पंजां ककारां दी हद तो बाहर नहीं जाना इस डिसिप्लिन तो बाहर नहीं जाना और चार बजर कुरैतां दी उस लकीर तो भी बाहर नहीं जाना चार बजर कुरैतां तो बच के रहना है पंजे रहतां नू पूरी तरह धारण करना है ना केवल बल्कि ईमानदारी नाल धर्म दी किरत करके कमाउणा है गुरु दसवंध देना है परोपकार हित जूझदे रहना है अपने अंदरों उठते विकारा जूझते रहना है वो जी तुक आप पढ़ने रहत नाम खालसा सोए जो चढ़े तुरंग खालसा सोए करे नित जंग बंदा सोचता है भी वह समा सी जिसले घोड़िया ते चढ़ के गुरु के सिख जंग करते सन ते महाराज के लिखाए हुए रहतनामे तो त्रैकाल ने हुण जे घोड़े नहीं ते जंग नहीं ते फिर दा मतलब है सिख की करे जे नहीं करता घोड़े ते नहीं चढ़ता जंग नहीं करता ते फिर सिख तो बेकार हो गया सिख सिख ना रहा ऐसी गल नहीं है वह जंग बाहर नहीं है बुराई नाल जंग है लेकिन बुराई तो अंदर भी चलती पई जिसने बंदा इधरों बहरों वेला हो साहब कलगीधर पातशाह कोल सिखा ने सवाल किया महाराज हुण तां कोई लड़ाई झगड़ा जंग कोई नहीं रह गया की करिए अजकल की करिया करिए साहब कह लगे युद्ध जारी रखो हैरान हो गए कह लगे महाराज हुण आपस च लड़िए युद्ध किहदे नाल जारी रखिए लड़न वाला दुश्मन ही कोई नहीं सारे भगौड़े हो गए छड़ गए भज गए हुण किहदे नाल लड़िए युद्ध जारी रखिए कैसा युद्ध वैसे महाराज ने यह भी रोजाना के नितनेम शामिल किया रेजाबाजियां करो तलवारबाजियां करो शरीर की कसरत भी करो शस्त्र धारनी होके शस्त्र की विद्या प्रवीण होने का जतन भी जारी रखो लेकिन इतने जिसने महाराज ने कहा युद्ध जारी रखो महाराज कि लड़िए धन जियो तेह को जग मैं मुख ते हर चित मैं युद्ध विचारे बारला युद्ध भी चित का युद्ध भी वह कि युद्ध है महाराज कह लगे अंदर थोड़े ते थोड़िया धारा पैदा ने कदे काम हमला करता है कदे क्रोध कदे लोभ मोह हंकार इन्हां नाल अंदरों ज्ञान की बढ़नी मनो हाथ ले कातरता कुतवार बुहारे ज्ञान दा शस्त्र लैके अंदर दी बुराई नूं वढ़दे चले जाओ अंदर दी भी सफाई जारी रखो युद्ध अंदर भी चल सकदा खालसा सोए जो चढ़े तुरंग जो मन दे घोड़े ते सवारी करे मन नूं काबू च रखे डिसिप्लिन च रखे सिक्खी दे डिसिप्लिन च रखे मन नूं शरीर दा डिसिप्लिन है कि रहतां दा धारनी होवे रहतां तों बचिया होवे मन का डिसिप्लिन यह है कि काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे काबू ना इस घोड़े नूं लगाम पा के बाणी अनुसार खालसा सोए करे नित जंग बुराइयां नाल अंदर भी बुराइयां नाल जंग करे बाहर भी जंग करे साहब कहंदे ने ऐसा गुरु का सिख उपदेश गुरु हर हर जप जप जापे सब किल विख पाप दोख ले जावे जिसने गुरु के बचना अनुसार एक डिसिप्लिन जीवन बतीत करेगा ना पाप धोते जाने दोष खत्म हो जाने दोख कहंदे ने दोष दोष खत्म हो जाने जीवन चो बुराइयां निकल जाने जो सास गिरास ते आए मेरा हर हर स्वास अंदर आवे स्वास बाहर जावे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਦੇ ਫਿਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਕਦਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਤਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਹ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ
ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਾਹੇ ਬਾਹਰ ਸਾਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਣ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਸ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਰਨਾਟਾਂ ਛਿੜਦੀਆਂ ਨੇ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਠ ਤੇ ਬੈਠ ਤੇ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦਕਾਮ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਦੇਵੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਵੇ ਦੁਰਮਤ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ਗੁਰਮਤ ਲੈ ਲਵੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਜਪਦਾ ਹੈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਜਿਨ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿੜਾਇਆ ਤਿਨ ਹੋਮੇ ਦੁਬਦਾ ਪੰਨੀ ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਵੇ ਕੋ ਮਿੱਤਰ ਨਾਹੀ ਵਿਚਾਰ ਡਿੱਠਾ ਹਰ ਜਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਹਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੱਜੇ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਤਿਨ ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਦੇ ਤਿਨ ਚੜ੍ਹੀ ਚਵੰਗਣ ਮੰਨੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਖੇੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹਦੇ ਬਲਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜੈ ਸਭ ਕੀਤਾ ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰਸੇ ਕਹੀਏ ਜੋ ਸਤਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਾਏ ਪਿਆ ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰਸੇ ਕਹੀਏ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮੁਖ ਰਾਮ ਕਹਿਆ ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰਸੇ ਕਹੀਏ ਜਿਸ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰਸੇ ਕਹੀਏ ਜਿਨ ਸਤਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਆ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੋਂ ਹੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੀ ਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚਲੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਚੱਲਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਚ ਚੱਲਦਾ

0: You're listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.
1: कुछ समय पहले लुधियाने तो बीबी अमरजीत कौर हो रही शब्द कीर्तन वाले साढ़े को ननकाना साहब तशरीफ ले आए उन्होंने दिती हुई कविता पेश है पटने विच चन अज चढ़िया

0: सरदार पहले तो एक पिंडा शाल उठा फिर आंदा नहीं खोर शाहूकार का फेर था
1: शाबाश शेरिया ए मार सारे जवान रे
0: चौकम सरदार अरे जबरा अरे खोर तो जबरा
2: मेरी बॉडी ना देख रही पागल हो जाएगी
3: अरे सिंह नहीं तो काले चुते सिंह की होते दीवे वालों

0: परेशानी हो रही है दौड़िया। मैं जो कुछ भी कीता इसलिए कीता है कि तू आदमी पैड़ा नहीं, हालात ने तेनू पैड़े गर्म करने मजबूर किया होगा। देख ले इन्हें दौलिया, जिना साथियों ने तेनू इना मान सी तेन अकलिया छड़ के नस गए।
1: तू सच मेरी अखा खोलती है सच जी।
0: दौले खां, तेरे अंदर वो खूबियां ने जिन्होंने सही राह से लगावे तो एक महान इंसान बन जाएगा।
1: महान इंसान ये किस तरह हो सकता है? मैं तो खौरिया किन्न खून हाथ रंगे किन्ने जुल्म किए ने।
0: परमात्मा बख्शनहार है, ऐसा ना लैन ना तेरे अंदर एक जागृति आएगी, फिर तू दौला डाकू नहीं दौलत खां फकीर रखवाएगा। याद कर खुदा नू पर करना
1: कलमा। मैं तो एक अनपढ़ गवार हूं, मैं कि जाना कलमा की हुंदा सब।
0: अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को बंदे। बोल या अल्लाह
1: या अल्लाह
0: या अल्लाह
1: या अल्लाह।

दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख शक्तवार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन ताए वैद ना भोले दारू ला। साहबा ने दुख गिने ने बंदे दे। बंदे नाल बंदा विछड़ जावे ते दुखी हो जाए, जिथे मोह बनिया हो प्यो पुत्र विछड़ जान, भरा भरा विछड़ जान, मां पुत्र विछड़ जान, मावां तियां विछड़ जान, दुख वापर।

तू बेअंत को बिरला जाने को बिरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द रंग हाय मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा नाना रूप तरे बहु रंगी सब तेरे निया तू बेन ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सभी मुन इंद्र महा शिव जो करी तू बेन अत ऊंचा ताका दरबारा